खुदा वही तो है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान जैसा कि तुम देखते हो इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जा ठहरा और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक एक मियाद मुय्यन तक गर्दिश कर रहा है, वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो।

और वो वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।

सूदमंद पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है।

उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही उनकी तरफ से कह दो कि खुदा। फिर उनसे कहो कि तुमने खुदा को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। ये भी पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर है, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला उन लोगों ने जिनको खुदा का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने खुदा की सी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनको मखलूकात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि खुदा ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वो यकता और जबरदस्त है।

उसी ने आसमान से मे बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया, और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह खुदा हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह खुदा सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।

लाचार सजदे, रियाकार सजदे, नादार सजदे, बेनूर बेजोक मुर्दार सजदे, सरों के सितम से संसार सजदे, दिलों की नहुसत से मसमार सजदे, है मफरूर सजदे, है मगरूर सजदे, है कमजोर बेजा माजूर सजदे, गुनाहों की चक्की में है चूर सजदे, घसीटे गुलामों से मजबूर सजदे, के सजदों में सर है भटकते हैं सजदे, सरासर सरों पे लटकते हैं सजदे, निगाहें खुजू में खटकते हैं सजदे, दुआओं से दामन झटकते हैं सजदे, वो सजदों

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ, जिसमें हम बात करते हैं फैकल्टी से रेलिवेंट, एकेडेमिया से रेलिवेंट, अपॉर्चुनिटी से रेलिवेंट, प्रोफेशनल लाइफ से रेलिवेंट, नेटवर्किंग से रेलिवेंट, स्किल्स और बहुत कुछ। आज हमारे प्रोग्राम फैकल्टी आर में जो शख्सियत मौजूद है उनका किसी भी तारुफ की उनको जरूरत नहीं है, वो भी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सिर्फ इस फैकल्टी के ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के भी हर किसी हर दिल अजीज हैं। और अगर ये कहा जाए कि आप इस फैकल्टी के पॉइनियर्स में से, बानियों में से हैं, जिन्होंने इस फैकल्टी को बुलंदियों तक लेके जाने में एक नया और एक अहम किरदार अदा किया, तो हम सबके हर दिल अजीज डॉक्टर फाहद अनीस, HOD फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। और इसके अलावा आप UCP एडवेंचर क्लब के पैट्रन हैं और इस तरह की एक लिस्ट गो ऑन करती है। सो अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम अस्सलाम,
2: कैसे आप?
3: अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना खूबसूरत तारुफ करवाया।
2: एक्चुअली आप ये तारुफ डिजर्व करते हैं। सबसे पहले तो फैकल्टी आर में आपको खुश आमदीद।
3: थैंक यू।
2: अच्छा, जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि इस फैकल्टी के पॉइनियर में से आप एक हैं, तो आप मुझे ये बताएं और हमारे सामाइन को बताएं कि किस तरह से फैकल्टी का स्टार्ट कैसे हुआ और अब आप फैकल्टी को कहाँ देख रहे हैं, क्या स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इशूज थे, क्या अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को दी गई, और अब किस तरह से चीजों को मजीद रिफाइन करके, और कैसे एज अ मेंटोर स्टूडेंट्स के इतने हर दिल अजीज हैं।
3: ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। ऑब्वियसली कल मुझे 11 साल पूरे हो गए हैं यहाँ पे फैकल्टी में, और मेरी ही 11 साल के साथ तकरीबन ये फैकल्टी भी 11 साल की हो गई है। जैसे आपने कहा कि मैं खुद इसका पायनियर फैकल्टी मेंबर हूँ। जब इसको स्टार्ट किया गया तो इसमें नो डाउट, जब किसी भी चीज़ को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी उसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें भी जब स्टार्ट किया गया उस टाइम पे जो डीन थे डॉक्टर मुगजुद्दीन शेख साहब, वो डीन थे, आई वॉज अ फैकल्टी मेंबर। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, और उस ग्रोथ के साथ अपने करिकुलम को मैच करना, वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत मेहनत की और एक कोशिश की कि स्टूडेंट्स को इस तरह के कोर्सेज उनके रोड मैप में दिए जा सके, ताकि जब इंडस्ट्री में जाएं वो लोग तो उनके पास वो स्किल सेट हो। क्योंकि डे वन से मेरा अपना भी ये एक विजन था, और फिर ऑब्वियसली जो सीखा हमने अपने उस टाइम पे डीन से, और फिर जो लेटर ऑन जितने भी हमारे मेन पोजिशन पे लोग आए, और अपने बाकी भी उस्ताद से, वो यही कि स्टूडेंट को जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाए उसको इस तरह से उसका प्रैक्टिकल करवाया जाए, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो इंडस्ट्री में जाके वो अपने आप को एलियन फील ना करे। तो एक सबसे बड़ा पहले चैलेंज तो ये था कि बीएस से लेके पीएचडी तक तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के करिकुलम डिजाइन करना, फिर उसको ये भी जहन में रखना कि क्या ये जो कोर्सेज हम दे रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास इंडस्ट्री में कैसे अवेलेबल है। और फिर जो नेक्स्ट बड़ा चैलेंज ये था वो उस प्रैक्टिकल चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लैब्स। तो पहले एक डेढ़ साल हमने उसको विद द हेल्प ऑफ आयर मैनेजमेंट उसको मैनेज किया, हमें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके अंदर रहते हुए काम किया। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त चलता चला गया, लोग भी ऐड होते गए, फैकल्टी मेंबर्स ने ज्वाइन किया, कारवा बनता गया। और आई विल से दिस कि जी वर्क के साथ साथ जो भी फैकल्टी मेंबर हमारे साथ ऐड हुआ, हर फैकल्टी मेंबर ने अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक इसकी वैल्यू एडिशन की है। आज अगर ये एक इतनी बड़ी फैकल्टी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, और फिर एक अच्छा नाम रखने वाली फैकल्टी अगर मार्केट में, तो उसकी वजह शायद मैं अकेला नहीं हूँ। इनिशिएट जरूर किया था, चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन उन चैलेंजेस को मेरे साथ बाकी तमाम फैकल्टी मेंबर्स ने, तमाम टीम ने उसको उन चैलेंजेस के ऊपर आके अपनी एक्सपर्टीज के साथ उसको टैकल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वी आर वन ऑफ द लाइक लार्जेस्ट फैकल्टी इन द प्राइवेट एंड इवन गवर्नमेंट सेक्टर, तो ये गलत ना होगा, लाइक ये मेरा अपना क्लेम है। और डेफिनेटली अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, तो वी हैव अ वेरी गुड रिसोर्सेज देयर इन द फैकल्टी। तो यस, अ लॉन्ग वे टू गो। और जब कभी सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे बहुत पुरानी बात है कि जब हमने
2: शुरू किया। बिल्कुल ऐसे नहीं, आपको देख के बिल्कुल ऐसे नहीं फील होता है, आप 11 साल से यहाँ पर है और आप एज अ पायनियर और इतनी स्ट्रगल और हार्डशिप्स के बाद आपने चीजों को इतना रिफाइन किया है हमारे लिए। एज अ टीचर मैं देखती हूँ कि हमारा करिकुलम, जब हमें पता चलता है ये कोर्स पढ़ाना है, वो हमारे लिए पढ़ाना हमें होता है कि ओके कोर्स डिजाइन हमें मिल गया और हमने पढ़ाना है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी डेडिकेशन है, वो ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन जान सकता है।
3: बिल्कुल ऐसे ही है। इवन कि आई स्टिल रिमेम्बर कि जब पहली बार हमें एनओसी मिला एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो हमने उसको बकायदा यहाँ सेलिब्रेट किया था।
2: अच्छा।
3: क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज एमफिल और पीएचडी उससे ऑफर नहीं कर रही थी, एक आध यूनिवर्सिटी थी। तो उसको उसका एनओसी अब कह लें कि हमारे लिए एक अचीवमेंट थी। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने कोशिश की तब भी, और अब ऑब्वियसली वो एडअप हो गया, बच्चों को एंगेज किया जा सके, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाई जाती थी यहाँ पे। बल्कि मैं पायनियर फैकल्टी मेंबर होने के साथ साथ जो मीडिया क्लब है उसका पायनियर पैट्रन भी रहा हूँ। तो हमने उसमें भी बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया। तब हमने बकायदा एक मीडिया गाला करवाया, मीडिया फेस्ट के नाम से बल्कि हमने उसको लेके चले, और उसमें हमने जो हमारा ओल्डेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है पपेट शो, हम उसको इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे। तो कोशिश ये की जाती है कि बच्चों को कुछ पुराना ट्रेडिशन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को भी साथ साथ लेके चला जा सके। लेकिन ऑब्वियसली जो लेटेस्ट वर्ल्ड की डिमांड है वो आपको पता है कि हम रेगुलरली अपना करिकुलम ऐड कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज में एंगेज रखते हैं, कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट करवाएं, ताकि वो जैसे मैंने पहले कहा कि उनको एक एलियन फील ना आए। और उसके साथ फिर हमारी लाइक आई कैन अगेन से कि इन आवर फैकल्टी वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि जो हमारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं वो भी हमारी बताई हुई जगहों पे इंटर्नशिप करें, ताकि हम उनसे फीडबैक ले सकें, और हम लेते भी हैं। आपको भी अंदाजा है कि हमने मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पीआर ऑर्गेनाइजेशंस, चैनल्स के साथ, रेडियो के साथ, न्यूज़पेपर के साथ एमओयू साइन ही इसी मकसद से किए हैं, ताकि बच्चों को वहाँ पर इंटर्नशिप पे भेजा जा सके, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकें, और फिर जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो वो अपने आप को मनवा सकें।
2: ऐसे ही है सर। दूसरा सवाल मैंने आपसे किया था कि आप इतने हर दिल अजीज हैं बच्चों के, बींग एन एचओडी भी बच्चों के फेवरेट लिस्ट में जो सबसे पहले नाम आता है वो डॉक्टर फाहद अनीस है। किसी भी क्लास में चले जाएं, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें, ऐसी क्या उसकी कहते हैं टिप एंड ट्रिक है, या क्या ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे इतना ज्यादा आपको ऑन करते हैं एंड दे ऑन इट बाय हार्ट?
3: नहीं, मैजिकल पावर तो कोई नहीं है मेरा ख्याल से। एक तो ऑब्वियसली थैंक टू ऑलमाइटी के वो जिसको इसे देना चाहे वो देता है, और इसमें शायद हमारा उतना कमाल नहीं है, ये मैं हमेशा मैं इसका मानने वाला हूँ। दो उसके अलावा दो चीज़ें हैं जो यानी कि मुझे लगता है कि शायद इंसान को प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप हर दिल अजीज हो या लोग आपको पसंद करें, बट उसमें दो फैक्टर्स मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, और अगर कोई प्रैक्टिस करे तो ये चीज़ वेरीफाई भी हो सकती है। एक आपकी नीयत का साफ होना। मेरे पास जब भी कोई आया वो स्टूडेंट है या मेरा कोलीग है या कोई विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है या कोई मेरे सीनियर हैं, तो मैंने हमेशा कोशिश ये की कि उनको जो एडवाइस की जाए, उनको जो सजेशन दी जाए, उनको जो कोई एक किसी भी इशू में अगर पढ़े तो उसका कोई सोल्यूशन दिया जाए, तो वो दिया जाए जो बिल्कुल मुझे लगे कि यस दिस इज ऑनेस्ट, इफ आई बीइंग एट हिज और हर पोजीशन तो मैं भी शायद यही करता। तो मेरी एक तो नीयत, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस हवाले से बिल्कुल उनको ऑनेस्ट ओपिनियन दी जाए, ऑनेस्ट मशवरा दिया जाए, जो मेरा दिल और दिमाग कह रहा है मैं वो उनके सामने रख देता हूँ। और तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का बहुत रोल है कि जब आप किसी को ऑनेस्टी के साथ मशवरा दे रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो वो क्योंकि इंसान का एक ऑरा होता है ना, तो आपके ऑरे से वो वाइब्स निकलती हैं, और आपका जो ओपोनेंट है जो आपसे सुन रहा है, आपसे समझ रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, तो उसको ये फील भी होती है आई थिंक कि हाँ यार ये जो बंदा बात कर रहा है, क्योंकि शायद उसमें आप स्ट्रेस उतना दे रहे होते हैं, आप उसमें मसाले ऐड कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस ऑनेस्टी के साथ जो एग्जाम्पल्स हम अपनी रियल लाइफ की दे रहा होता हूँ, तो एक तो ये फैक्टर उसमें जरूर है। दूसरा चीज जो मैंने बीइंग एक्सपर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखी और देखी है वो ये कि आई विल ट्राई कि मैं कोई भी जब मेरे पास आए तो इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग मैं उसकी बात सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम हमेशा जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन मैं लोगों को सुनने के लिए सुनता हूँ। तो जब वो अपनी बात को शेयर कर लेते हैं, हर कंप्लीट बस्ट आउट कर देते हैं, इवन के सेम टाइम मैं हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर पाता, बट वो जब आप सुन लेते हैं उनको लगता है कि यार ही इज समवन कि जो हमारी बात सुनता जरूर है, हमारा गिला है, शिकवा है, वो सही बात है गलत बात है, बट आई डू लिसन टू माई स्टूडेंट्स, उनको टाइम देता हूँ यहाँ से घर यानी कि ऑफिस से जाके भी, अपने कोलीग्स को भी, और वेलकम करता हूँ क्रिटिसिज्म अपने ऊपर भी. तो मुझे लगता है ये दो फैक्टर्स हैं जो शायद,
2: और इसी को मैं ऐड ऑन करूंगी कि वाकई ऐसे ही है, जब हमें कोई भी मसला होता है एज अ लेक्चरर और एज अ टीचर और एज अ कोलीग, कुछ भी, इवन हमारी पर्सनल लाइफ का है, प्रोफेशनल लाइफ का है, तो पता होता है कि सिर्फ हाथ संभाल लेंगे. सो यही से हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लिसनर्स अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे. आप सुन रहे हैं फैकेलिटी आर, मैं हूं मरियम इरशाद, प्रोग्राम FM 92.6 फैकेलिटी आर के साथ.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं हम सबके प्यारे, हम सबके हर दिल अजीज डॉक्टर फाहा दनीस। और अभी हम बात कर रहे थे उनकी स्ट्रगल्स, इशूज और जितनी भी अचीवमेंट्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स इस फैकल्टी को बनाने में और जिस फैकल्टी के बेसिक से अब तक उन्होंने देखी और फिर इस फैकल्टी की अचीवमेंट्स में किस तरह से अपना रोल प्ले किया। अब सर, अभी जैसे आप बात कर रहे थे मीडिया फेस्ट की, तो अगर अभी हम देखें, रिसेंटली हमने कम्युनिकेशन गाला की अनाउंसमेंट किया है। मीडिया फेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता होगा कम्युनिकेशन गाला से, बिकॉज मुझे मीडिया फेस्ट का आइडिया नहीं है। सो अब कम्युनिकेशन गाला जो है उसका बेसिक मकसद क्या है, क्यों हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसका बेसिक मकसद क्या है, और इस साल के कम्युनिकेशन गाला में कौन कौन सी सरगर्मियां जो है वो शामिल है?
2: जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो मीडिया फेस्ट था वो उस टाइम यूसीपी जो मीडिया क्लब है उसका एक इवेंट था। जो क्लब का इवेंट होता है ऑब्वियसली दो, वो क्लब भी फैकल्टी का हिस्सा है, लेकिन क्लब की एक्टिविटीज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स इसलिए होती है कि वो उसको मैनेज भी कर रहे होते हैं, उसको अरेंज भी कर रहे होते हैं, आइडिया भी हमसे डिस्कस करते हैं, हम लोग उसको सुपरवाइज करते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी वैरायटी और तरह से ऐड कर सकते हैं। जहां तक कम्युनिकेशन गाला का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंसीव किया था फ्रॉम कम्युनिकेशन कार्निवल इनिशियली, और प्लान इज कि हम एक इस तरह का मेला सजाएं यहां पे जिसको फैकल्टी खुद से होस्ट करे, और उस मेले के अंदर जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं यूसीपी के, क्योंकि आपको पता है कि हम एज अ फैकल्टी ऑफ मीडिया बहुत सी इवेंट्स करवाते हैं, फिल्म फेस्टिवल का भी हमारा होता है, हम सिंपोजियम भी करवा रहे होते हैं और भी कंपटीशन चल रहे होते हैं, थिएटर के भी आपको पता है कि हम अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ कंपटीशन करवा रहे होते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो एंट्रीज होती हैं वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही होती हैं। इसी तरह जो यूसीबी का टाकरा है उसमें भी ऐसा है कि यूसीबी से बाहर की एंट्रीज आ रही हैं। तो हमने ये जो माइंडसेट था इसके बैकएंड पे वो ये था कि एक तो ओवरऑल जेनेरिक इवेंट हो और उसमें अपने हमारे यूसीपी के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हों कि वो उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें, उसमें आए अपने जो भी उनकी स्किल सेट है। जैसे भी आपने बताया कि हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में कंपटीशन दिए, मिसाल के तौर पे पोस्टर कंपटीशन है, फिर हम इसमें सोशल मीडिया रील्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, फिर इसी तरीके से हमने टेलीविजन कमर्शियल या पब्लिक सर्विस मैसेज की एक कैटेगरी दी है, और फिर जो हमारी इसमें लास्ट कैटेगरी है वो टीवी एंकरिंग एंड होस्टिंग की है।
1: ठीक है,
2: तो इसको हमने ओपन किए तमाम फैकल्टीज जो यूसीपी के अंदर है उनके स्टूडेंट्स के लिए कि वो आए इसमें पार्टिसिपेट करें, और फिर इसके अगेंस्ट प्राइज मनी भी है विनर की भी और रनर अप की भी। तो आइडिया ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दें, उनके पास भी ऐसे मौके हों कि वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए जो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या उन्होंने जो चीजें सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और इसका हिस्सा बन सके।
1: सो सर, इसमें एज अ पार्टिसिपेंट सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
2: फिलहाल हमने जो कम्युनिकेशन गाला के लिए रखा है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ ही, यानी कि वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं।
1: और ये पार्टिसिपेशन से उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या ऐसा जो है मेन अचीवमेंट्स आएंगी या इसका क्या रोल होगा उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में?
2: जी, जो सेकंड पार्ट था जो मैं आपको बताना चाहूँ वो यही है कि एक तो हम इसको बच्चों की पार्टिसिपेशन को, एंगेजमेंट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि बच्चे जो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपनी उन स्किल्स को शोकेस कर सके। मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के स्टूडेंट्स जो अपनी स्पेशलाइजेशन के आखिरी मराहल में हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि टीवीसी का शूट कैसे किया जाता है, उसका कॉपी कैसे लिखनी है, उसका आइडिया कैसे बनाना है और पूरी स्टोरी बोर्डिंग क्या करनी है। फिर इसी तरीके से जो बच्चे टीवी एंकरिंग एंड होस्टिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि वो एक ऐसा कंपटीशन में आए, कंपटीशन के आने से देखें एक तो बेनिफिट ये होगा वो अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा मुझे लगता है कि इस तरह के कंपटीशन एक हेल्दी जो है एनवायरमेंट डेवलप करते हैं।
1: और जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और उन्हें क्रेज है कि वो टीवी सीरीज शूट करें, पीआर या एड की कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं या फिल्म से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पास जितने अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में।
2: क्रॉस, क्योंकि फैकल्टीज पार्टिसिपेशन होगी, एक अच्छी नेटवर्किंग भी होगी इसके हवाले से, और दूसरा ये है कि हमारे अपने स्टूडेंट का काम भी शोकेस होगा। इस तरह कंपटीशन से जब वो विन करेंगे तो उनको ऑब्वियसली इंकरेजमेंट भी मिलेगी, वो इंकरेज होंगे कल को इससे ज्यादा अच्छा काम करने के हवाले से, और फिर क्योंकि इसमें जजेस होंगे, इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो उनको फीडबैक भी दे रहे होंगे कि हाउ दे कैन इंप्रूव देयर वर्क, तो ये उनके लिए फ्यूचर उनके करियर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इसी वजह से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेट भी करें और एक कंपटीशन की फिजा को बहुत अच्छा और पॉजिटिवली लेकर चले।
1: और सर, जैसे अभी आप जजेस की बात कर रहे थे, तो क्या मीडिया इंडस्ट्री से और जितने प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं क्या वो इन्वाइटेड होंगे एज ए जजेस और वो इस गाला का हिस्सा होंगे?

0: लाइफ में रहते हुए इक्विप्ड करें, क्या स्किल सेट सीखने की जरूरत है जो उनको कल को जॉब तलाश करने में और अच्छा करियर बनाने में मदद करेगी। तो डेफिनेटली एक तो इस हवाले से भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, दूसरा जहां जजेस आ रहे हैं, जजेस में हमारी कोशिश ये भी है कि कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाएं। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स ही आएंगे, वही इनको जज करेंगे, और उन एक्सपर्ट्स में हमारी कोशिश है कि जो हमारे अपने अलुमनाए हैं जो इसी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, तो हम उनको ही बुलाएं एज अ जजेस, ताकि वो भी एक प्राउड फील कर सकें अपने अल्मा मैटर्स में वापस आके, अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में वापस आके जहां से उन्होंने सीखा और आज वो बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं।
1: और साथ हमारे स्टूडेंट्स जो इस पूरे गाला का हिस्सा है, पार्टिसिपेंट है, वो भी सीख सकें कि एज इन टाइम अगर वो भी इसी तरह से मेहनत करेंगे तो दे विल बी ऑन दैट पोजीशन।
0: उनकी मोटिवेशन भी है कि ये वही स्टूडेंट है जो यहां से पढ़ के इन जगहों पे जाके।
1: और सर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसमें नेटवर्किंग किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इनहांस कर सकते हैं, या नेटवर्किंग का कितना मौका मिलता है उनको एक दूसरे से सीखने का, डिफरेंट और अदर मीडिया पर्सनालिटीज से या किसी स्पेशलिस्ट से, या स्किल सेट जो उनका है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्पेसिफिकली विद रेलिवेंस टू नेटवर्किंग।
0: नेटवर्किंग आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर अगर हम मीडिया के स्टूडेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि उसका तो शायद सर्वाइवल ही नहीं है नेटवर्किंग के बगैर। और इस तरह के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो मैनेजेरियल साइड से देखेंगे, वो स्टूडेंट जो उसको मैनेज कर रहे हैं तो उनकी अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक नेटवर्किंग बनती है, उनको पता लगता है कि एक्चुअली काम करने का तरीकाकार क्या है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये क्रॉस फैकल्टी यहाँ पे पार्टिसिपेशन आएगी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और पहले भी जैसे कि अक्सर फैकल्टी से करते हैं, साइकोलॉजी वाले करते हैं, लॉ वाले बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज से आती है, पोस्टर डिजाइनिंग के हवाले से आईटी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा एंट्रीज आ रही होती है हम लोगों को। और फिर क्योंकि एंकरिंग एंड होस्टिंग इज अ प्लेटफॉर्म जिसके लिए जो भी समझता है कि मेरी आवाज में इतना दम है और मैं उसमें स्ट्रेस एंड पॉजिटिव बहुत अच्छे तरीके से ला सकता हूँ, तो बहुत से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब क्रॉस फैकल्टी पार्टिसिपेशन होती है तो उसमें बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से, उनका मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का। उस इवेंट में जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं और कैसे वो कम्पीट कर रहे हैं, माइंडसेट क्या है, मुझे लगता है कि शायद इंसान एक छोटी सी शेल से निकल के एक बड़े शेल में जाता है जहां पे उसको आईटी का माइंडसेट डिफरेंट है, मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट उसका माइंडसेट एक अपने अंदाज से है कि वो कैसे सोचता है किसी प्रोडक्ट को शूट करना है या कोई पोस्टर डिजाइन करना है, उसमें वो उसके जो विजुअल एलिमेंट्स है वो उनको कैसे परसीव कर रहा है। तो आई थिंक ये लर्निंग भी है और नेटवर्किंग भी है कि स्टूडेंट जब क्रॉस फैकल्टी मिलते हैं, बात करते हैं, कम्पीट करते हैं, तो दे केम टू नो एंड हाउ वी कैन इंक्रीज आवर स्किल सेट।
1: ऐसे ही है मेरे ख्याल से इस तरह के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, गालाज होते हैं, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेवेंट जो भी बच्चों को सीखने का मिलता है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहिए। सो सर जैसे अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इस कम्युनिकेशन गाला में बच्चे किस तरह से एंट्रीज भेज सकते हैं?
0: इसके लिए हमने जो एक तो सोशल मीडिया पे पोस्टर हमने बना के अनाउंस भी किया गया, तो उसमें एक तो QR कोड मेंशन किया गया है बाकायदा, और इनकी बाकी तमाम जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए बी सी, इसकी लॉबीज में स्टैंड भी डिस्प्ले की गई हैं जिस पे QR कोड मेंशन है, आप उसको स्कैन करें और स्कैन करके आप डायरेक्टली यू विल लैंड इनटू अ ऑनलाइन फॉर्म जिसको आप फिल करेंगे, और उसको फिल करके अपने जो भी डिटेल्स हैं जिसमें आपकी जो बेसिक आपकी रजिस्ट्रेशन फैकल्टी नाम फोन नंबर और जिस कैटेगरी के आप आना चाह रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एंट्री फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चाहते हैं स्टूडेंट को इंकरेज करना चाह रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, अपने स्किल सेट को पॉलिश करें, उसको आजमाएं कई कंपटीशन में। तो इस हवाले से वो QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द QR कोड फैकल्टी ऑफ मीडिया के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहां से भी लिंक को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर भी फॉर्म फिल।
1: और सर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने रील सबमिट करवानी है या उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सबमिट करवानी है, तो सर रिलेवेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑलरेडी हैं या उनको बताई गई हैं या किसी तरह से पोस्टर्स वगैरह पे भी हैं?
0: एक तो जो हमने गूगल फॉर्म ऑलरेडी प्लान किया हुआ है जिसको हमने बनाया, उसमें कुछ थीम और सब थीम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सेकंड, हम लोगों ने डिटेल के लिए ऑलरेडी इसमें कुछ व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं फोकल पर्संस के, ताकि स्टूडेंट अगर कोई इसमें फर्दर डिटेल इंस्ट्रक्शंस लेना चाह रहे हैं, कहीं कंफ्यूज हैं, तो वो उनको वहां भी इनकी कंफ्यूजन दूर भी कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो फॉर्म के जो इंट्रोडक्शन है, हमने उसका एक छोटा सा ब्रीफ भी इसके अंदर मेंशन किया है, तो आई होप सो कि काफी सारी इंस्ट्रक्शन वहां पे मेंशन है जो बच्चों को क्लियर हो जाएंगी। एंड देन लेटर ऑन वंस हमारी रजिस्ट्रेशन रिसीव हो जाएंगी, तो हम लोग जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी में है, तो हम उनकी मजीद बेहतर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो उस पे भी उनको वो दी जा सकती है इस हवाले से।
1: ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, अभी हम चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए, आप सुन रहे हैं FM 92.6 और मैं हूँ मरियम इरशाद।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और हमारे पास आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फाहद अनीस, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन गाला के बारे में। सर, अगर कम्युनिकेशन गाला की बात की जाए तो हम हर साल, आपको पता है कि बहुत अच्छा, पूरी फैकल्टीज और पूरी यूनिवर्सिटीज में से हमारा जो एक फिल्म फेस्टिवल है उसको हर जगह पर माना जाता है कि यस, फिल्म फेस्टिवल फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन UCP का दी बेस्ट है। तो कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल किस तरह से डिफरेंट है, और क्या कम्युनिकेशन गाला इन फ्यूचर हम इंटर यूनिवर्सिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बनेगा?
4: जी, थैंक यू वेरी मच। कम्युनिकेशन गाला और अगर फिल्म फेस्टिवल की बात करूँ तो फिल्म फेस्टिवल आज से 4 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब हम फिल्म की स्पेशलाइज डिग्री लॉन्च कर रहे थे। और उसके पीछे भी यही मकसद था कि जो स्पेशलाइज डिग्री हो तो उसके साथ एक स्पेशलाइज इवेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। तो आपके पास बिल्कुल दुरुस्त है कि अब 4 साल हर साल हम तकरीबन करते हैं, और हमारा जो फिल्म फेस्टिवल है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हर साल से ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें हर साल बेहतर से बेहतर आप कह लें कि एंट्रीज भी आ रही है, बल्कि इस साल तो इंटरनेशनल एंट्रीज भी आई हैं। तो एक चीज़ तो जो हमने कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल का जो डिफरेंट बनाता है वो ये कि फिल्म फेस्टिवल इज ओपन फॉर एवरीवन। उसमें यूनिवर्सिटी से बाहर से बहुत सी एंट्रीज आती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कम्युनिकेशन गाला में फिलहाल हम इसको खाली अपने UCP तक ही महदूद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि हमने ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होने दी। फिल्म फेस्टिवल में द फोकस इज इन कि हम फिल्म क्या कंपटीशन दे रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री का कंपटीशन होता है, और उसके साथ साथ हम लोग म्यूजिक वीडियो को हम लोग देख रहे होते हैं, जबकि इन्हीं तीनों कैटेगरीज को हम लोगों ने कम्युनिकेशन गाला में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। कम्युनिकेशन गाला में हमने वो सेगमेंट्स ऑफ द मीडिया पिक किए हैं जिनको हम फिल्म फेस्टिवल में टच नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी एंकरिंग होस्टिंग है, रील्स के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, पोस्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और टेलीविजन कमर्शियल और PSM की बात कर रहे हैं, ताकि हम बाकी फील्ड्स ऑफ द मीडिया को भी टच किया जा सके।
3: और सर, जैसे अभी आप बता रहे थे रील्स की बात कर रहे हैं और हम कमर्शियल्स की बात कर रहे हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो क्या कुछ स्पेसिफिक इशूज हैं जिनके ऊपर कहा गया बच्चों को, या दे आर फ्री टू मेक वट एवर दे कैन इन बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटीज?
4: जहां तक तो बात टेलीविजन कमर्शियल्स की है या पब्लिक सर्विस मैसेज की है, तो उधर हम लोगों ने ओपन कैटेगरी दी है, क्योंकि टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए स्टूडेंट को किसी एक खास टॉपिक या एरिया पे कन्फाइंड कर देना तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर इतने शॉर्ट टाइम में टेलीविजन कमर्शियल निकालना समटाइम मुश्किल हो जाता है, लॉन्ग विजर अदर। दो शॉर्ट तो नहीं, हम लोग एक अच्छा डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन स्टिल अच्छा टीवी से निकालने के लिए एक फोकस टाइम चाहिए होता है। तो हमने उसमें प्रेफरेंस यही दी है कि ओपन कैटेगरी है, तो वो चाहे किसी ब्रांड की प्रमोशनल कैंपेन के हवाले से TVC कर रहे हों और या कोई सर्विस पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहे हों। जहाँ तक रील्स की बात है तो उसके लिए हम लोगों ने जरूर कुछ थीम्स दिए हैं, जिनमें से एक फोकस हमारा, जैसे आपको पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो हमने उसके हवाले से दिया गया, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, सोशल इश्यूज पे अगर कोई बनाना चाह रहा हो, बहुत से हमारे सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम है जिनको हाईलाइट किया जा सकता है, और फिर उसमें कुछ हमने फनी वे में भी हम चाह रहे हैं कि लोग ऐड ऑन करें कि द मोमेंट दैट मैटर्स, कि कौन सा ऐसा लम्हा है जो आपको लगता है कि यस दिस इज इट, तो उसको भी
3: जिसने
4: शूट
3: आपकी जिंदगी बदल दी
4: या जिसने
3: आपको डिप्रेशन दे दिया,
4: इट कैन बी एनीथिंग। तो इस तरह के हमने एरियाज को दिया हुआ है उसके, ताकि स्टूडेंट उस खास थीम से रिलेटेड काम कर सके।
3: सर, कम्युनिकेशन गाला और फिल्म फेस्टिवल और आपकी फैकल्टी की अचीवमेंट्स और स्टार्ट से लेकर अब तक का सफर के ऊपर गुफ्तगू करके बड़ा मजा आया। मैं आपसे ये आखिर में बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि अगर आप हमारे सामाइन को और हमारे स्टूडेंट्स को अपने प्रोफेशनल या अपने एजुकेशनल लाइफ में से कोई एक चीज जो आपने सीखी या एक ऐसा सबक जो आपको याद रह गया और उसको आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो वो ऐसा क्या है जो आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे?
4: वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, और ये जो आखिरी सवाल होता है सबसे मुश्किल होता है नॉर्मली, जब भी जितनी मैंने इंटरव्यूज दिए मुझे लगता है ये बड़ा टफ है अपनी पूरी लाइफ में से कोई ऐसी चीज़ समराइज करना। लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर, बल्कि एक दिन पहले भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, ही वॉज वेरी डिप्रेस के सर जॉब्स की समझ नहीं आ रही, करियर के हवाले से क्या करें, तो कहता मुझे किसी ने कहा कि सिर्फ हाथ के पास जाओ, तो मैंने उसको कहा, और कहता सर आप, यानी कि इनिशियल आपका पहला क्वेश्चन था और आखिरी में उसको रिलेट भी कर लेता हूँ। जो एक चीज़ मुझे आज तक याद है, जो मेरा कह लें कि मेन एक, मैं जिसको प्रैक्टिस भी करता हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी अपने इनिशियल करियर में थे तो समटाइम ऐसा टाइम आता था कि जॉब्स नहीं मिल रही, टेस्ट दे रहे हैं, फेलियर्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि कब
3: क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होंगे भी या नहीं, हमारे साथ वाले आगे निकल गए, हम पीछे रह गए,
4: घर वाले हैं, उनकी नजरें आपसे कुछ पूछ रही हैं, कुछ जानना चाह रही हैं, तो वो कुछ सर्टन टाइम बड़ा टफ होता है और मुझे लगता है चैलेंजिंग भी होता है, और फिर हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा होता है, तो उसमें से अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करनी होती है। तो उस टाइम पे हमारे एक टीचर है, तो हम अक्सर तीन दोस्त ना उनके पास चला जाया करते जब भी हम फील करते यार नाउ वी फीलिंग लो, तो वो उन्होंने जब हमने जाना तो उन्होंने हमें इस तरीके से मोटिवेट करना, और बल्कि मैं उनका नाम भी देता हूँ, नईम मुस्तफा साहब हैं, मैं इसलिए उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ कि उन्होंने हमारे टफ टाइम में हमें बहुत ज्यादा हमें मेंटोरिंग की है। व्हेन वी वेंट टू हिम तो वो हमें वहां पे बैठे बैठे करोड़पति बना दिया करते थे, इस हद तक मोटिवेट करते थे वो हमें।
0: टीचर जो है वो एक टीचर जो है वो एक बच्चे की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक टीचर और उसके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है,
4: तो वो बहुत मोटिवेट किया करते थे। और उसके बाद उन्होंने तीन बातें हमें कही कि यार इस पे ना आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, या जो भी आप अपना बेस्ट दे सको वो दो। उन्होंने कहा जी एक, अगर किसी का रिस्क लगवाना हो, जॉब लगवानी हो, तो जितनी एफर्ट आप उसमें डाल सको आप डालो नेक नीयति के साथ, तो कभी इससे पीछे नहीं हटना। दूसरा उन्होंने कहा जी कि लोगों की हेल्थ के हवाले से अगर कोई इशू हो और अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सके किसी भी तरह से, उनको कहीं अच्छा मशवरा दे के फाइनेंशियली या कहीं गाइड करके या किसी को रिक्वेस्ट करके कि उनको जो भी फैसिलिटी उनको मिल सके, तो उस पे हेल्थ के हवाले से जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए तो कोशिश करें टू द बेस्ट ऑफ योर आप उसको परफॉर्म करें। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा जी कि एजुकेशन के लिए, अगर आपको किसी के एजुकेशन के लिए जो भी एफर्ट करनी पड़े, जिस भी हद तक जाना पड़े, जरूर जाएं। अगर ये इन तीन चीजों को आपने सबका जारी समझ के करना है और वही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं की जो जो चीजें उन्होंने हमें सिखाई उसी को अमानतन एज इट इज आगे पहुंचा रहे हैं, और आई थिंक यही मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है और जिसको मैं बाकायदा कॉन्शियस माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यही मैं अपने सामईन को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को कहना चाहूंगा कि इन चीजों को फॉलो करें, एंड देन रेस्ट इज अपॉन Almighty, वो हमेशा अच्छा ही करेगा।
0: आपसे गुफ्तगू करके बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया कि आपने फिडेलिटी आर के लिए हमें वक्त दिया और हमारे लिसनर्स को और मुझे सीखने के लिए इतना कुछ दे दिया। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं FM 92.6 और इसी के साथ हमारे ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले वीक दोबारा एक मजे से अच्छे से मेहमान के साथ हम फिडेलिटी आर में आपके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फिडेलिटी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फिडेलिटी आर के साथ।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.
1: And now you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP की दुनिया.
2: Explore your world with FM 92.6.

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: इतना वाजे तरीके से पेश कर रहे थे कि किसी के लिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, मगर अल्लाह ने इख्तियार दिया था इंसानों को कि वो चाहें तो बेईमानी करें, चाहे तो हक बात को जानने के बावजूद इनकार कर दें। तो अल्लाह ताला ने उस जमाने के लिहाज से तो ये फरमाया कि भाई अल्लाह चाहता तो सब पर जबरदस्ती करता, ये वही वाली बात है, ला इकराह फिद दीन। खुदा ने किसी को दीन पर मजबूर नहीं किया, उसने लोगों को आजादी दी। एक उसका धारा वो है कि जो आज एप्लीकेबल है, जो आपके सवाल से मुताल्लिक है, कि चूंकि अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है, चूंकि दीन की प्रेजेंटेशन में खामियां हैं। आप ये सोचिए, कभी आपने गौर किया है कि हम झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए छोड़ के कहीं बाहर जाएं, किसी बैरूने मुल्क में आप ये महसूस करें कि दो चार मुसलमान हैं जिन्होंने के बदतमीजी की है एयरपोर्ट पे, और वो जो उनके तरीके नॉर्म्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है, क्यू को तोड़ के आए हैं वगैरह वगैरह
1: जी जी,
0: और उसके बाद वो चारों खड़े होकर अल्लाह अकबर नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये नमाज की कौन सी एडवर्टीजमेंट है, अच्छी या बुरी? ज़ाहिर लोग कहेंगे यार ये झूठे बदतमीज और ये नमाज पढ़ रहे हैं। सो आज जो है ना, आज इस्लाम की प्रेजेंटेशन के ऊपर ऐसे गुबार आ गए हैं कि आज किसी अच्छे इंसान के लिए मुमकिन है कि वो इसको समझ ही ना पाए। चुनाचे ये जो आय मुबारक सूरह हूद की आयत नंबर 118 आपने बयान की, उसमें ये पहलू भी है कि अल्लाह चाहता तो हर जमाने में दीन की प्रेजेंटेशन इतनी वाजे कर देता कि कोई इख्तलाफ ही ना करता, मगर अल्लाह ने ये नहीं चाहा, उसने लोगों को आजादी दी है, अभी इख्तलाफ करते रहेंगे।
1: शुक्रिया, चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, इंशाल्लाह वापसी पे फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम लाहौर, और आपको आपके मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। जश्न आज़ादी की खूबसूरत सी स्पेशल ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया पे। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से, जश्न आज़ादी की जो इंजॉयमेंट है सेलिब्रेशन के हवाले से। और 79 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, मार्ज वजूद में आए हुए 79 ईयर्स की एक ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है वो है, और एक साल कम 80 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और ये वतन कल भी आबाद था, आज भी आबाद है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आबाद रहेगा। इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद मोमिन जमशेद। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन आपका। और मोमिन जमशेद जो हैं, आपको यहाँ पे साथ साथ बताता चलूं कि म्यूजिक की दुनिया में भी अपना नाम बना रहे हैं, और म्यूजिक का बहुत ज्यादा जो है वो भी इनसे सुनेंगे प्रोग्राम के एंड पे, उनसे म्यूजिक भी सुनेंगे प्रोग्राम के दरमियान में, बल्कि हमारे दूसरे होस्ट के आने से पहले पहले इनको हमने सुन लेना है। मोमिन जमशेद साहब, बताइएगा कि जश्न आजादी की जो तैयारियां है आपकी कहां तक पहुंची और क्या क्या बनवा लिया, और ये जो सूट आपने पहना है एडवांस में ही आपकी तैयारियां नजर आ रही हैं, क्या कहां से बनवाया, कब बनवाया?
1: बहुत शुक्रिया हमजा, आपने मुझे इनवाइट किया जी। 14 अगस्त की तैयारी तो अपने अरूज पे है। हम लोग तो मुझे ये नहीं कि हम लोग सिर्फ 14 अगस्त में ही तैयारी शुरू करते, जैसे अगस्त का महीना शुरू होता है पहली अगस्त से ही हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ग्रीन सूट पहना हुआ है, ये मैंने पहले ही तैयार किया, पहले ही मैंने टेलर को दे दिया हुआ था कि ये मेरे लिए 14 अगस्त से पहले हर सूरत तैयार होना चाहिए, हाँ, हाँ, जो हाँ, मर्जी हो जाए। भाई 14 अगस्त है, कोई आम दिन तो नहीं है। हमारे जितने भी हमारे बड़े हैं, उन्होंने कितनी जाने देकर इसको पाकिस्तान को हासिल किया है, और हम खुशी ना मनाए कि उन्होंने हमारी खातिर पाकिस्तान हमें लेके दिया है, और हम कितनी आजादी से आज वक्त गुजार रहे हैं।
0: तो बाजा आपने किस साइज का लिया? बाजा आपने खरीद लिया है कि नहीं खरीदा? आजकल तो हमें हर बच्चा जो है वो बाजे के साथ मिलता है, तो आपने ले लिया बाजा?
1: जी बच्चे जाहिर है, जो मेरे से छोटे बच्चे उनको तो शौक है ना बाजा। अब हम बड़े हो गए, इसका ये मतलब
0: मैंने बड़े लोगों को भी खरीदे हुए देखा है बाजा।
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं खरीदा, मैंने तो बच्चों को खरीद के दिया कि वो जाएं और गलियों में बाजे बजाएं, लोगों के कानों में बाजे बजाएं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और ये सूट आपने यानी कि पहले से सिलवा लिया?
1: हाँ जी, मैंने तो पहले अगस्त को ये सूट टेलर को दे दिया था कि मुझे 14 अगस्त से पहले हर सूट ये सूट चाहिए ही चाहिए।
0: और क्या बात है आपका टेलर की, उसने आपको 14 अगस्त से पहले आपका सूट आपके हाथ में थमा दिया, आपको पहुंचा दिया, क्या बात है, ये तो बड़ी बात है। मोमिन साहब, ये साथ साथ हमें बता दीजिएगा कि रात को जब 13 अगस्त की सेलिब्रेशन लाहौर लिबर्टी में स्टार्ट हो जाती है, उसको किस तरह से एंजॉय किया? मैं तो बहुत एंजॉय करता हूं, और आपने उसे कितनी दफा एंजॉय किया, कब कब गए, और क्या बहुत खूबसूरत सा लगा साथ?
1: मैं वो बेसिकली 13 अगस्त को मेरे सारे कजन मेरे घर आ जाते होते हैं, हम लोग फिर गाड़ियों में निकल जाते हैं, हम लोग गुलबर्ग, जैसे आपने भी बताया कि गुलबर्ग में बकायदा आतिशबाजी भी हुई थी, तो हम वहां पर गए। हम लोग मीनार पाकिस्तान में बकायदा आतिशबाजी होती है, आपको पता होगा, वहां पर भी आतिशबाजी होती है, हम लोग वहां पर भी गए, हम लोगों ने आतिशबाजी देखी, खाने खाए, बड़ा एंजॉय किया। ये समझ जैसे ईद की चांद रात होती है ना, ये 13 अगस्त की रात 14 अगस्त की चांद रात होती है बेसिकली।
0: क्या बात है, बहुत तैयारियां, यानी कि आप तो पूरे जिंदा दिल। और लाहौर से आपका तलक है ना?
1: बिल्कुल, लाहौर से ताल्लुक है,
0: जद्दी पुश्ती लाहौर है आप,
1: जद्दी पुश्ती लाहौर,
0: जिंदा दिलाने लाहौर हो, उनको जश्न आजादी का इवेंट मिल जाए, पाकिस्तानी हो और वो एंजॉय ना करें, ये तो पॉसिबल नहीं ना है। और फिर उसके बाद सुबह सुबह की जो फजर के बाद जो है 21 तोपों की सलामी मुल्क पाकिस्तान को दी जाती है, और वो खूबसूरत सा मंजर है, उसको भी आपने कभी लाइव देखा?
1: बिल्कुल गए, बिल्कुल गए हैं हम लोग वाघा बॉर्डर में सुबह पहुंचते हैं, और वहाँ पर जो परेड होती है, आह वाह वाह वाह वाह। कभी आप भी अगर कभी प्रोग्राम बनाए और आप हमारे साथ चलें लाइव, तो मैं कहता हूँ वाघा बॉर्डर में जो परेड देखे, उस टाइम जो फखर महसूस होता है ना, शायद वो नहीं, आप कभी टीवी पे देखे तो वो गूंज नजर आती है आपको, तो लाइव देखने में क्या गूंज आएगी, वो जब झंडा किस तरीके से वो तह करके अपने हाथों से लेके जाते हैं, वो बड़े फखर का दिन
0: होता है, बहुत प्राउड मोमेंट होता है, दिल कह रहा होता है प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी।
1: बिल्कुल,
0: प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुल्क हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, और अगर हम है मोमिन है हमजा है तो पाकिस्तान है, तो हम
1: बिल्कुल,
0: हमारी पहचान हमारा मुल्क है, हमारा देश हमारी पहचान है, और इस मुल्क के लिए किस हद तक कुर्बानियां दी गई, अगर हम उसको बुला देंगे तो शायद इस दिन की जो अहमियत है वो हम खो दें। जो हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, उस हवाले से क्या कहते को देख
1: जी, जैसा हम जानते हैं कि जैसे वो इंडिया से लोग हमारे पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे, वो किस तरीके से वो आए, वो हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए कुर्बानियां दी,
0: बहुत खूब,
1: हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, यहाँ तक हम तो चलो मना रहे हैं, लेकिन मैंने नोट किया आजकल जो हमारी खासतौर पर जो अल्फा नस्ल है जो आ रही है, जो आ चुकी है, वो उनका ज्यादा ध्यान
2: सोशल मीडिया में आता है, उनको भी ये चाहिए कि वो ये चीज को याद रखें, 14 अगस्त को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। ये कोई आम दिन नहीं है, ये बहुत बड़ा दिन है।
0: बिल्कुल, और उस ऐलान को जब आप अपने माइंड में बनाते हैं, उस माइंड में सोचते हैं, उस ऐलान को जब ऐलान हुआ था कि आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान और ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो, ये तो आवाज इस टाइम अगर अभी भी मैंने सोचा ना तो मेरे ये रोंगटे खड़े होंगे।
2: मैं सोचता हूँ कि उस टाइम जिन्होंने सुना होगा क्या उनमें क्या वो सोच रहे होंगे, कितना फखर का वो दिन होगा जब वो आजाद होकर मुल्क में आए होंगे।
0: इमेजिन कीजिएगा कि वो सिचुएशन क्या होगी उस वक्त जब इतनी कुर्बानियों के बाद एक ऐलान होता है, और जिस तरह मिसाल ले लीजिएगा कि इतना अरसा आपने केस लड़ा और फिर कहा जाता है कि फलां शख्स है वो केस जीत चुका है, और वो प्राउड मोमेंट, वो इंजॉयमेंट की अलबत्ता वहां पर कुर्बानियां दी गई, अलबत्ता खून बहा, हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी और इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, उसको रहेगा हम जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद जो खुशी का मोमेंट था, प्राउड का मोमेंट था, वो एक काबिले दीद होता है, वो याद रखने के काबिल होता है। मोमेंट साहब, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने यहाँ पर हमें बताया, क्यों ना कुछ यहाँ पर आप सुना दें हमें जश्न आज़ादी के हवाले से ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस जो है वो म्यूज़िक को इंजॉय करती है और प्रोग्राम के दरमियान में अगर मौसीकी का तड़का ना हो तो प्रोग्राम जो है वो बोर सा हो जाता है।
2: बिल्कुल,
0: तो यहाँ पे कुछ सुना दीजिएगा खूबसूरत सी आवाज़ में।
2: जी बिल्कुल,

0: आओ, उस सुबह नौ की तकमील बनते हैं जो जुल्मत के खात्मे के साथ ढलनी है। आओ, हम ऐसी धरती की पहली ईंट बनते हैं जहां जुल्म की वादी ना हो, जबर का चिराग ना हो, जहां नंग ना हो, भूख ना हो, अफलास ना हो, जहां पर दहकते कोयलों पर गामजन नंगे पांव अपनी बेगुनाही साबित करता कोई इंसान ना हो, जहां पर अवाम मुकद्दर के कातिब ठहरे, जहां उन पर मुसल्लत ना अहल हुक्मरान ना हो, जहां पर लोग ना सड़कों पे बेकसूर मारे जाएं, जहां पर इंसान हो इंसान हैवान ना हो, जहां पर मजदूर की दौलत व इज्जत पर पांव धरे सरमायादार बराजमान ना हो, जहां पर बच्चा बच्चा अपनी मंजिल से वाकिफ हो, जहां उनकी उम्मीदों से खेलता रहनुमा ना हो। आओ, हम उस बारिश की पहली बूंद बनते हैं जो लाखों बूंदों को रास्ता दिखाएगी। हम वो बारिश बनते हैं कि जिससे सहरा में जिंदगी की उम्मीद जाग जाएगी, कि जिससे सहरा में भी गुलिस्तां उगने लगते हैं।
1: आओ, हम ऐसी धरती की पहली ईंट बनते हैं जहां सब नोहे इंसानी बराबर हो खड़े, जहां महमूद व अयाज की सफों में तजाद ना हो, जहां पर हर कोई बिला खौफ होकर निकले, जहां घर के खुले दरवाजे की परवाह ना हो, जहां हर किसी को अपना हक हो मुयस्सर, जहां रोजी को तरसता हुआ दहकान ना हो, जहां परिंदे खुली फिजा में उड़ते होंगे, जहां किसी हाकिम की बनाई हुई जिंदान ना हो। चलो, हम सूरज की वो पहली किरण बनते हैं जो अंधेरे में रोशनी की नवीद लाएगी, अपने पीछे रोशनी का सैलाब लाएगी, कि जिस रोशनी से खौफ और डर के साए तिल मिलाएंगे, के अंधेरे की तैरगी से सहमे हुए बच्चे जिस रोशनी में उठकर खेलने लगते हैं। चलो, हम धरती की पहली ईंट बनते हैं।
0: चलो, हम धरती की पहली ईंट बनते हैं।

0: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे जश्न आज़ादी की खूबसूरत सी रवायात पर और जश्न आज़ादी का के मनाने के अंदाज पर। और मोहम्मद मोमिन जमशेद जो थे वो आज के हमारे इस जो सेगमेंट के मेहमान थे आज के इस प्रोग्राम में। और मोमिन साहब ने जिस तरह खूबसूरत सी आवाज़ में हमें बताया समझाया कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ और बिल्कुल हमें लेकर चलना है। जे कैसा फील आता है जब छोटे छोटे बच्चे हाथों में पाकिस्तान का परचम लिए हुए गलियों के अंदर जो है वो फिर रहे होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की मासूम बच्चों की जो हलक से आवाज आती है, कितनी खूबसूरत सी वो होती है।
1: मुझे खूबसूरत तो जाहिर है बच्चों की आवाज बिल्कुल होती है, लेकिन मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब मैं भी गलियों में निकलता था। और आपको भी याद होगा जब वो बैज लगाया करते थे और पेंट मुंह पे लगाया करते थे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही आज भी वही थीम चलता रहा। देखिए हिस्ट्री तो चलती जाएगी, उसमें इनोवेशन हो सकती है लेकिन इन्वेंशन तो हो चुकी है
0: टाइम के साथ। टाइम के साथ ना, वही वही बात आ गई ना कि जिस तरह के सब मनाते तो जश्न आजादी के अंदाज बदल जाते हैं, अंदाज आप बिल्कुल जाते हैं,
1: बिल्कुल ऐसे
0: तो वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है बच्चे आजकल तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा कम नजर आते हैं सोशल मीडिया की तरफ, शायद ध्यान हो गया, मैं तो इस चीज को मिस करता हूं। और फिर वो आटे के साथ
1: बिल्कुल हम तो पहले शुरू हो जाते थे, 10 दिन पहले शुरू हो जाते थे पूरे घर को सजाना, वो आटे के साथ झंडियां लगाना बकायदा और लाइटिंग करना व्हाइट और ग्रीन की पूरे घर को सजाना, बड़ा प्यारा लगता था,
0: बहुत खूबसूरत था। मेरी तो घर में बड़े फड्डे होते थे, मैं तो कह देता था जी मुझे जो है वो आपने 10 दिन पहले जो है ना इंतजाम पूरा करके दे देना है, झंडियां जो है वो आपने खरीद के दे देनी है, लाइटें जो है वो आपने हमारी रबी अव्वल के लिए पड़ी होती थी वही वाली जो ग्रीन और व्हाइट थे वो मैं जश्न आजादी पे घर के बाहर, और एक हमारा घर होता था जो प्रॉपर तौर पे तैयार होता था जश्न आजादी गली के अंदर, मैं तो भाई बहुत एंजॉय करता था। और इस दिन को एंजॉय ना करे तो किस दिन को एंजॉय करे, ये दिन हमारा हमारी पहचान है, आज का दिन हमारा मुल्क हमारा पाकिस्तान हमारी आन है, हमारी शान है और हमारा सब कुर्बान हमारे वतन के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमारा सब कुर्बान जिन्होंने

0: ने हमारे मुल्क की खातिर सरहदों पर जो है वो खड़े होकर इतनी सख्त मौसम के अंदर भी जो है वो कुर्बानियां दी सरहदों पर हिफाजत की।
1: एक बात भी ऐड करूंगा, पाक आर्मी तो बिल्कुल जो हमारी सरहदों पर खड़ी है जब आराम से रहने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, उनको बिल्कुल सलाम है, लेकिन उनसे ज्यादा उनके माँ बाप को सलाम है,
0: बहुत
1: जिन्होंने अपने बच्चों को पता भी है उनको कभी भी जंग हो सकती है और कभी उनके बच्चे शहीद हो सकते हैं, उन्होंने खुद अपने बच्चों को भेजा हुआ अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। मैं उनके माँ बाप उनके बहन भाइयों को सलाम पेश करूंगा।
0: बहुत खूब बिल्कुल जी सलूट पेश करते हैं हम, और आज का ये प्लेटफॉर्म जो है, आज का दिन जो है, ये बिल्कुल उनको उनके नाम करते हैं, उनको डेडिकेट करते हैं, उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चे अपने लगते जिगर अफवाज पाकिस्तान में भर्ती करवाए और इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की हुरमत पर जो है वो जान कुर्बान करने के लिए अपने बच्चे जो है वो राह में लेकर आए, हम सलूट पेश करते हैं। मोमिन जमशेद साहब, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में बताया, हमने तो बहुत इंजॉय किया आज के प्रोग्राम को कर भी रहे हैं।
1: अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हमें इतने वसाइल दिए हैं कि अगर हम किसी भी बच्चे को तालीम दे सके ना तो हम वो काम करें।
0: बहुत खूब, ये बहुत
1: किसी भी बच्चे को हम स्कूल उसको भेजें, उसकी तालीम पूरी करवाएं, या हजार दो हजार निकल, जिसकी लाख लाख डेढ़ लाख रुपए तनख्वाह है, इससे भी चलो मान लेते कम है, अगर वो महीने का 1000 रुपया निकाल लेगा और पांच बंदे मिलकर 1000 रुपया निकालेंगे तो मुझे बताएं 5 बजे तालीम याफ्ता हो गए कि नहीं हो,
0: बिल्कुल हो गए,
1: कितना स्वाब का काम होगा और उस पर कल को वो भी इन फ्यूचर में सिक्योर हो जाएंगे। एक तालीम तो देखें,
0: एक नस्ल तो इस हद तक जो है तालीम असरअंदाज,
1: बिल्कुल
0: औरतें वुमेन हो उसमें मर्द हो
1: सबके लिए तालीम बहुत
0: जरूरी है,
1: क्योंकि तालीम इंसान को उठना बैठना सिखाती है।
0: बहुत बहुत बेहतरीन, मेरा प्रोग्राम भी लगता है इसी FM 92.6 पे आप सुनते हैं बज़्म दानिश, उसमें ये बात मैं पहले एक दफा कर चुका हुआ हूँ कि तालीम जो है इस हद तक जरूरी है कि आपको अपनी फैमिली के अंदर बात करने के लिए भी एजुकेशन का जो है पढ़े लिखे होना जरूरी है, इल्म के बगैर जो है वो आप कुछ भी नहीं। और इस मुल्क में अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक बात जो एजुकेशन की आपने की, इस चीज को मैं जरूर हाईलाइट करूंगा कि जहां तक हो सके एजुकेशन के अंदर हम पाकिस्तान के
1: बच्चों को
0: वो जरूर दिलवाएं, जहां तक हमारा हाथ जा सकता है हम तालीम के लिए रास्ते खोलें, क्योंकि तालीम वो है जो पाकिस्तान को सहारा दे सकती है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती है। और उस वक्त जब पाकिस्तान में अगर कोई मुश्किल आती है तो वही तालीम याफ्ता नौजवान है जो उठकर आगे आते हैं और अपने इल्म से, अपनी जो एक नॉलेज है, रिसर्च है, उससे जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन जो है वो रास्ता निकाल सकते हैं। और एक बच्चे को अगर हम तालीम दिलवाना शुरू कर दें तो, अगर मिसाल के तौर पे अगर आज से 79 ईयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं और 79 ईयर्स पहले हमने अगर किसी को हर साल एक बच्चे को भी तालीम दिलवाई होती तो 80 बच्चे आज तालीम याफ्ता होते। अगर हमने उस दिन कोई पौधा लगाया होता तो आज वही पौधा एक तनावर दरख्त बनकर सहारा भी दे रहा होता, छांव भी दे रहा होता, ऑक्सीजन भी दे रहा होता, फल भी दे रहा होता और खूबसूरती भी दे रहा होता।
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं कि जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और प्लांट्स की बात हुई, एजुकेशन की बहुत जरूरी है, कोई भी बच्चा जो है वो तालीम के बगैर इस मुल्क में सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बिल्कुल आपने बहुत खूब कहा, और सर्वाइव करने के लिए एजुकेशन इज मस्ट,
1: जरूरी
0: मस्ट है। और इस वक्त मौसम जो है वो भी काफ़ी चेंज हो गया, क्लाइमेट इफेक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तंग कर रहा है, तो उसको किस तरह से हमें चेंज, क्योंकि प्लांट्स तो जरूरी हैं तो इस मुल्क के लिए ऐसे काम हमें करके जाने चाहिए ताकि कल को हमें को याद रखें।
1: बिल्कुल ऐसा ही है,
0: याद रखें,
1: क्योंकि देखें ना अभी आपने अभी बात की है कि कितना वो सर्दियां जैसे आती हैं,
0: बिल्कुल
1: साथ ही वो स्मोक हो जाती है, यही अगर हम प्लांटेशन करें तो ऑटोमेटिकली स्मोक खत्म हो जाएगी।
0: बहुत खूब, बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ मोमिन जमशेद ने जो है यहाँ पर हमें, इनका ताल्लुक भी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है, और बहुत बेहतरीन।
1: आखिरी में मैं एक पैगाम जरूर देना
0: चाहूंगा, मैं बिल्कुल पैगाम ही लेने आपकी तरफ आ रहा था, आप पैगाम दीजिएगा, फिर हमारे को होस्ट हैं हमारे अगले जो यहां से लेकर चलेंगे प्रोग्राम को FM 92.6 पे जो है मोहम्मद अली हसन साहब जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। मोमिन जमशेद से पैगाम लेते हैं और अली हसन साहब को हम कहते हैं कि आके प्रोग्राम को जो है वो आगे से संभालें और अपनी सीट संभालें और मजीद जो टैलेंटेड लोग हैं, मजीद पाकिस्तान के लिए बेहतरीन जो लोग हैं उनको बतौर मेहमान जो है उनसे सुने भी, उनसे सुनाए भी, और मजे मजे की जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी। मोमिन साहब पैगाम दीजिएगा।
1: मेरा सबसे इम्पोर्टेंट खास तौर पर आने वाली नस्लों को ये पैगाम है कि अपने जो जिनकी कुर्बानी उनको कभी भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक वो आपके दिल में होंगे आपके अंदर पाकिस्तान का जज्बा पैदा होगा।
0: बिल्कुल,
1: एक दूसरा यूनिटी,
0: बहुत खूब
1: यूनिटी, یونٹی آپ لوگوں نے لازمی رکھنی ہے. کسی کی باتوں پہ آ کے یہ کر دینا وہ کر دینا نہیں. جب ہم اگر پاکستان کے ایک ایک بندہ اتحاد میں ہوگا نا, کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس پاکستان کو کبھی بھی حملہ کر سکے.
0: ویسے بھی ہم تین ممالک کا پچھلے دنوں میں
1: بالکل ایسا ہی ہے, ترکی کا, سعودی کا اور پاکستان کا.
0: اب تو اسلام کے اوپر جو ہے وہ ممالک جو اکٹھے ہو گئے ہیں,
1: بالکل
0: اتحاد کی یہاں سے بہت بڑا
1: اتحاد آ گیا
0: نظر آتی ہے.
1: بالکل ایسا ہی.
0: اور الحمدللہ میں اس 79 ایئرز جو پاکستان کو ہو چکی ہیں اس پہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اب پاکستان وہ ملک ہے کہ جس سے ہر ملک ہاتھ ملانا چاہتا ہے, جس سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اور بڑے فخر سے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ترکیہ نے اعلان کیا, بڑے فخر سے سعودیہ نے اعلان کیا کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جس کے تحت پاکستان ہمارا محافظ ہے. تو محافظ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے, کمزور محافظ نہیں ہوتا.
1: بہت اچھی بات کی.
0: پاکستان طاقتور ہو چکا ہے اس وقت. پاکستان دنیا بھر میں اپنی بہترین ریپریزنٹیشن کے ساتھ اپنا منفرد اور اعلیٰ مقام بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ایک دعا کے ساتھ جو ہے میں پروگرام علی حسن صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر آنے والے ہر زوال سے جو ہے پاکستان کو محفوظ رکھے, پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے, پاکستانی عوام کے لیے بہترین سے بہترین جو ہے وہ سسٹم بنائے, اور پاکستان سے ہر قسم کی جو مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں اس سے دور رکھیں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد.

0: एक ख्वाब से जिसने जन्म लिया, ये सरजमीन, ये मिट्टी, ये मुल्क। आओ पूछें अपने आप से कि नाउमीदी, लाचारी, बेसुकूनी, क्या यही है हमारा मुकद्दर? क्यों ना हम ख्वाब देखें? क्या खुश रहने पर हमारा हक नहीं? क्या इस मिट्टी को खुशबू का हक नहीं? आओ एक नया जन्म दें इस मुल्क को। बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी लगन, कुछ नए ख्वाब और खूबसूरती की चाहत। हम सभी तो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बने।
1: पढ़ा लिखा,
2: रोशन,
3: महफूज,
4: मजबूत,
5: अमन पसंद,
6: मेहनती,
7: खुशहाल,
8: जिम्मेदार, मुकम्मल,
9: तेज रफ्तार,
10: सरसब्ज और शादाब।
0: चाहते हो कि ऐसा हो तो आओ मिलकर बनाए इस मुल्क को अजीम और नाकाबिले तस्खीर।
11: जश्न आजादी मुबारक पाकिस्तान।

0: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया। जैसे कि आप जानते हैं, आज 14 अगस्त का दिन है, आज इंडिपेंडेंस का दिन है। आज के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, आज़ाद जबान आज़ाद हुई, लिबास आज़ाद हुआ, सोच आज़ाद हुई और ख़ुद मुख्तारी की एक ताकत आज़ाद हुई। इसी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रहील अशरफ, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बहुत अच्छे नात खां हैं और इनकी नातें मुझे बजाते खुद बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मिली नगमे सुनाएं तो इनकी आवाज़ के अंदर इंसान गुम हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम भाई जान, कैसे हैं आप?
1: जी वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, आप कैसे हैं? सब खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, अल्लाह का बड़ा करम है। आप बताएं, आप ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
0: रहील, बड़ा एक ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर फील करता हूँ कि जब तक मुतालिया पाकिस्तान का की पढ़ाई नहीं की थी, जब तक पता नहीं था कि ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, इसकी क्या कदरों मंजिलत है, इसकी अहमियत का जब तक नहीं पता था, तब तक मेरे लिए 14 अगस्त एक सेलिब्रेशन का दिन था, मेरे लिए 14 अगस्त फायरवर्क का दिन था, मेरे लिए 14 अगस्त बचपन में वो घर से आटा थोड़ा सा चोरी करके चंडियां लगाने का दिन था। तो आपके नज़दीक बचपन के 14 अगस्त और आज के 14 अगस्त में कितना फ़र्क है?
1: जी हसन भाई, जैसे कि आपने भी बताया कि आपका जो बचपन का 14 अगस्त का मौका होता था वो फायरवर्क्स और इस तरह की सेलिब्रेशंस में गुजरता था, तो बिल्कुल मेरा भी इसी तरह का था कि बचपन में रिलेटिव्स आ जाते थे घर पे या हम कहीं पे चले जाते थे तो इस तरह का इंजॉय हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, 14 अगस्त को पढ़ा और उसके पीछे की सारी हमने कुर्बानियों को मैंने देखा, कायदे आज़म की एफर्ट्स को देखा और इकबाल ने जो ख्वाब देखा, और फिर मुझे हुआ ये कि जो है पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है।
0: बिल्कुल ऐसी है, ये लाखों कुर्बानियों का एक तोहफा है जिसका नाम मुल्क पाकिस्तान है। इस वक्त मैं मुखातिब होना चाहूँगा इस मुल्क के नौनिहाल के साथ, इस वक्त मैं मुखातिब होना चाहूँगा इस मुल्क के उस नौजवान के साथ जो इस मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाता है और शायद इस मुल्क की सहूलियात को, इस मुल्क के सिस्टम को कोसता है। मैं उस नौनिहाल से मुखातिब होना चाहूँगा, मैं मुखातिब होना चाहूँगा उस नौनिहाल से जो अपने मोटरसाइकिल के ऊपर एक स्पीकर लगाता है और 14 अगस्त को मनाता है। ये 14 अगस्त बहुत अहमियत रखता है, ये 14 अगस्त बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला, ये 14 अगस्त उन लीडर्स की कुर्बानियों के बाद मिला जिन्होंने अपनी फैमिली, अपनी सेहत, अपना कारोबार, अपने मामलाते ज़िंदगी को बरअक्स रखा इस विजन के कि मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है, हमें खुद मुख्तार करवाना है, हमें आज़ाद करके एक आज़ाद ज़बान देनी है, आज़ाद लिबास देना है, आज़ाद मुल्क देना है। ये सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें इस्लामी असूलों के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुमलिकत में बैठे हैं। इस मुल्क को लेना बहुत मुश्किल था, बहुत सी कुर्बानियाँ दी। आप देखें, कभी इस मुल्क ने दहशतगर्दी को देखा, कभी इस मुल्क ने तालिबान देखे, कभी इस मुल्क ने जंगों को देखा, कभी इस मुल्क ने अंदरूनी मसाइल को देखा, कभी इस मुल्क ने महंगाई को देखा, तो कभी इस मुल्क ने किसी मसले को देखा, तो कभी किसी को देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने इस मुल्क के इस झंडे को कभी झुकने नहीं दिया। वो वाघा बॉर्डर हो या कोई भी मैदान, वो आईटी का मैदान हो, वो मीडिया का मैदान हो, वो लॉ का मैदान हो या फिर मुआशी मैदान, हमने किसी भी मैदान में इस मुल्क पाकिस्तान के झंडे को डाउन नहीं आने दिया। हमारी गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, हमने हमेशा इस मुल्क के इस झंडे की इज्जत को बरकरार रखा। इस इज्जत के हवाले से, इस मुल्क की रिस्पेक्ट के हवाले से, इस मुल्क की खूबसूरत माहौल के हवाले से क्या मिली नगमा आज रहील हमें सुनाना चाहेंगे?
1: जी हसन भाई, मैं आपको आज एक बहुत ही प्यारा मिली नगमा सुनाऊंगा। ए वतन प्यारे वतन, उसके कुछ दो अशार आपको मैं सुनाना चाहूँगा।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक खवातीन हज़रात टू फैकल्टी आवर। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। हमारा प्रोग्राम फैकल्टी आवर के अंदर फैकल्टी ऑफ लॉ के तावन के साथ हम बात कर रहे थे लीगल डायरीज के ऊपर, जिसके एपिसोड 1 में हम बात कर रहे थे चाय, केस लॉ और यूनिवर्सिटी लाइफ। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेंटोरशिप के ऊपर। इज्जत, उसी को लेते चलते आप एक चीज़ जो हमारे लीगल एजुकेशन है उसके अंदर क्या एक चेंज होगा जो कि बच्चों के लिए भी और इन प्रैक्टिकल लाइफ जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे उनके लिए ये पाथ ईजी करेगा।
2: अगर एमएल लीगल एजुकेशन की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मूट और मॉक ट्रायल्स होते हैं, तो मॉक ट्रायल में पीछे हमने एक काम स्टार्ट किया था 2024 में कि आप फुल जो फाइल होती है ना, केस फाइल बनाना सिखा देते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे प्रोफेशनल फील्ड में हेल्प करेंगी। तो हमें सिर्फ स्टडी के साथ साथ अगर हमें प्रोफेशनल ऐसे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाए, लाइक के हाउ टू प्रिपेयर अ कम्प्लीट केस फाइल, जो कि इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, हम जो एडवोकेसी का आई गेस लेवल 4 है उसमें भी ये पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर ये स्टार्टिंग क्लासेस से ये स्टार्ट किया कर दिया जाए फ्रॉम द 3rd और 4th सेमेस्टर, कि आप उन्हें पूरी केस फाइल बनाना सिखाएं, उसके साथ साथ आप उन्हें सिखाएं कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो मूट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम ऐसे जो एडवोकेसीज हैं हमारी उनमें ये कंपल्सरी कर दें कि हर बंदा आके अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करे, तो इससे ना सिर्फ उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होंगी बल्कि उनका लीगल आर्ग्यूमेंट स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टडीज को प्रोफेशनल लेवल के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे कि हमें ये चीजें फील्ड में हेल्प कर सकती हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सिर्फ हमें स्टैट्यूट पढ़ाएं या एक्ट्स पढ़ाएं और उसके आगे इंटरप्रिटेशन पढ़ाएं।
1: इस आपके थ्रू आउट आपकी जर्नी के अंदर एक तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ थी, जो यूनिवर्सिटी से बाहर लाइफ थी आपकी, जैसे कि जो हॉस्टल लाइफ थी या आपकी सिटी के अंदर लाइफ थी, उसके अंदर आपका सबसे मुश्किल चैलेंज कौन सा था?
2: एमन, एक चैलेंज का कहना तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया था, तो इधर सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो सबसे मुश्किल बात थी वो था यहाँ पर सर्वाइवल, मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँगी, क्योंकि आप एक बिल्कुल चेंज इन्वायरमेंट से एक बिल्कुल अलग जगह पे आ रहे हैं, और उसके अलावा आई एम द फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम माई फैमिली के जो ऐसे बाहर हॉस्टल में आकर रह रहा है, तो मुझे वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों में ज़्यादा, कि मुझे ये हॉस्टल लाइफ से वैसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और उसके अलावा ना यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो खास मुझे कोई फेस नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ पे आके फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, खाने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मसाइल थे, कि यहाँ पे आप जाहिर है जब बाहर से आप 24/7 खा रहे हो, आपको घर का खाना तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको हाइजीन के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग पे मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा मसाइल आए थे।
1: इज्जत, जो हमारे सारे खवातीन हज़रात सुन रहे हैं उनके लिए अगर कोई उनमें से लॉ की फील्ड ऑप्ट करना चाहता है तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी कि नंबर 1 वो ये फील्ड क्यों चूज करें, नंबर 2 अगर उन्होंने चूज कर लिए तो वो किस माइंडसेट के साथ इस फील्ड को अप्रोच करें?
2: एमन, जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि मैं उनको एडवाइस क्या देना चाहूँगी, तो अगर तो कोई चूज़ करना चाह रहा है तो मैं उसे कहूँगी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपने पेयर्स से सुना है कि हमारा लॉ में इंटरेस्ट था लेकिन हम परस्यू नहीं कर सके ड्यू टू दिस रीज़न या कुछ भी, लेकिन आपको परस्यू करना चाहिए, अगर आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़ो, क्योंकि आपका अगर एक फील्ड में इंटरेस्ट है और आप उसको पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको सिर्फ अपने राइट्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज का पता नहीं चलता, आपको ये भी पता चलता है कि अगर मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है मैं उसकी रेमेडी क्या क्लेम कर सकता हूँ, आपको अपने हक में आवाज़ उठा सकते हो। आप बेसिकली अगर आपको अपनी इन बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं ना पता, तो आपके साथ कुछ जुल्म या ज्यादती भी हो रही है ना, तो आप किसी के मुंतजिर रहते हो कि कोई आपके लिए आवाज़ उठाए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज के दौर में हर किसी को अपनी इन बेसिक राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके अलावा अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर इस फील्ड को चूज़ करें। उसके बाद आपने कहा कि अगर किसी ने चूज़ कर लिया है तो वो उसको किस माइंडसेट से लेके चले, तो अगर कोई फीमेल है तो फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि आपने बेटा पढ़ तो लिया, लो आप आगे कंटिन्यू तो नहीं करेंगे, क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर हमने पढ़ा है तो हमने उसको कंटिन्यू करने के लिए पढ़ा है, तो वो अपने अपना जो बिलीफ है ना वो फर्म रखें कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अगर कोई लड़का है।

0: आप उस अपने आइडिया को या अपने आप को पर्सनल होने दें कि मैं ये नहीं कर सकता, खुद पे बिलीव रखें बजाय कि इधर उधर की आवाज़ों के। क्योंकि अगर आपको कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं तो कुछ लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं, तो आप अप्रिसिएशन पे फोकस रखें और अपना जो जर्नी है वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू करें।
1: क्या आपने अपनी जर्नी के अंदर दोनों चीज़ें देखी हैं, इनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट?
0: जी अमन, अगर मैं बात करूँ डिस्करेजमेंट की, तो सबसे आप ये इंसानी आई गेस नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि आप जब देखते हो ना कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है तो आप उसको उस वक्त के लिए आप बहुत खुश होते हो, लेकिन आपके जो जहन में वो कहते हैं ना छाप रह जाती है किसी चीज़ की, वो यही है कि अगर आपको कोई डिस्करेज करता है ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहता है और आपके जहन में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी बात आ जाती है कि शायद ये बात ठीक थी, मैं ये नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मुझे ये सुन सुन के लगता था मैं शायद अच्छा बोल नहीं सकती, मैं लीगल आर्ग्यूमेंट्स अच्छे नहीं दे सकती, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे टीचर्स हैं, मैम सबा ही थी, मेरा जो पहला मूट हुआ था एडवोक्सी 1 का तो उसमें वो एज एन एडजुडिकेटर थी, तो उन्होंने मैम सादिया थी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि बेटा आप बहुत अच्छा बोल सकते हो। उसके बाद से फिर मैंने मूट में पार्टिसिपेट किया, मैंने मॉक ट्रायल्स में हिस्सा लिया, मैंने उसमें जीता भी। तो ये है कि आप अगर डिस्करेजमेंट, मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया, मैंने अपने रिलेटिव्स की तरफ से भी फेस किया, लेकिन अगर ये है कि आप उसकी तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको जो अप्रिसिएशन मिलती है ना आपको लगता है कि वो बहुत कम है और जो डिस्करेजमेंट आपको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन नेगेटिव साइड को एक तरफ के लिए रख के आप पॉजिटिव साइड पर फोकस करो कि आप अगर पॉजिटिव साइड पर फोकस करोगे ना तो आप खुद को ज़्यादा सक्सेस की तरफ जाते हुए पाओगे, इंस्टेड ऑफ कि आप नेगेटिविटी को सोचते रहो, ये सोचते रहो कि मुझे इस काम में डिस्करेजमेंट मिली है मैं ये कर ही नहीं सकता। खुद पे यकीन रखें और जो आप लोग आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं उन पे कहें कि देखिए अगर मुझे डिस्करेजमेंट मिली है अप्रिसिएशन भी मिल रही है और मैं खुद को बेहतर कर सकता हूँ। आपको खुद पे गरूर भी नहीं होना चाहिए और आप खुद को ये भी नहीं समझोगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बस आपका बिलीफ फॉर्म होना चाहिए और आप अपना काम करते रहो।
1: इसे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अक्सर कहते हैं कि उनको बहुत मसला होता है फ्रॉम डीलिंग विद के या तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर पार्ट लें या वो सिर्फ पढ़ाई के अंदर लें, तो आपके पास उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि वो दोनों को कैसे?

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो।

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ये जो खुशबू किसी एक वादे की है, इसके विरसे का हम इस्तियारा बने, हर तरफ फैलती बेअमारात में हो जो मंजिल निशान।

0: एक ख्वाब से जिसने जन्म लिया, ये सरजमीन, ये मिट्टी, ये मुल्क। आओ पूछें अपने आप से कि नाउमीदी, लाचारी, बेसुकूनी, क्या यही है हमारा मुकद्दर? क्यों ना हम ख्वाब देखें? क्या खुश रहने पर हमारा हक नहीं? क्या इस मिट्टी को खुशबू का हक नहीं? आओ एक नया जन्म दें इस मुल्क को, बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी लगन, कुछ नए ख्वाब और खूबसूरती की चाहत। हम सभी तो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बने।
1: पढ़ा लिखा,
2: रोशन,
3: महफूज,
4: मजबूत,
5: अमन पसंद,
6: मेहनती,
7: खुशहाल,
8: जिम्मेदार, मुकम्मल,
9: तेज रफ्तार,
10: सरसब्ज़ और शादाब।
0: चाहते हो कि ऐसा हो तो आओ मिलकर बनाएं इस मुल्क को अजीम और नाकाबिले तस्खीर।
11: जश्न आजादी मुबारक पाकिस्तान।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: मैं हूं हिना अदीब, अहले पाकिस्तान को मेरी जानिब से आज़ादी की ढेरों मुबारक।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: Magical Point 6.
2: एक ख्वाब से जिसने जन्म लिया, ये सरजमीन, ये मिट्टी, ये मुल्क। आओ पूछें अपने आप से कि नाउमीदी, लाचारी, बेसुकूनी, क्या यही है हमारा मुकद्दर? क्यों ना हम ख्वाब देखें? क्या खुश रहने पर हमारा हक नहीं? क्या इस मिट्टी को खुशबू का हक नहीं? आओ एक नया जन्म दें इस मुल्क को। बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी लगन, कुछ नए ख्वाब और खूबसूरती की चाहत। हम सभी तो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बने।
3: पढ़ा लिखा, रोशन,
4: महफूज,
5: मजबूत,
6: अमन पसंद,
7: मेहनती,
8: खुशहाल,
9: जिम्मेदार,
10: मुकम्मल,
11: तेज रफ्तार,
12: सरसब्ज और शादाब।
2: चाहते हो कि ऐसा हो तो आओ मिलकर बनाए इस मुल्क को अजीम और नाकाबिले तस्खीर।
13: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक है, हम सब की है ये जान।
1: पाकिस्तान हमारा है, हम सब की है ये शान।
2: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: तमाम अहले वतन को FM 92.6 की जानिब से जश्न आजादी मुबारक।
1: किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या मानी मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो, ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: इस 14 अगस्त पे मेरा तमाम यंगस्टर्स को और तमाम पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि इस मुल्क की कदर करें जो कायद ने आजाद मुल्क हमें दिया है, इसकी कदर करते हुए इसके कायद के विजन को वहां तक लेके जा सकें जहां पे कायद चाहते थे कि हम पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान की हमेशा हम इतनी रिस्पेक्ट दें। जब कहीं भी जाएं, बींग एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, हम ये शो अप करें कि हम जैसा कोई नहीं है। तो इस 14 अगस्त पे हम सबको मिलकर अहद करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर जाएं पाकिस्तान के लिए कि वो रहते वक्त तक हमारा और इस पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन रहेगा।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड।

जिस दिन तूने जन्म लिया इस धरती में मां, हमने सुख का सांस लिया, दिल से निकली

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: एक ख्वाब से जिसने जन्म लिया, ये सरजमीन, ये मिट्टी, ये मुल्क। आओ पूछें अपने आप से कि नाउमीदी, लाचारी, बेसुकूनी, क्या यही है हमारा मुकद्दर? क्यों ना हम ख्वाब देखें? क्या खुश रहने पर हमारा हक नहीं? क्या इस मिट्टी को खुशबू का हक नहीं? आओ एक नया जन्म दें इस मुल्क को। बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी लगन, कुछ नए ख्वाब और खूबसूरती की चाहत। हम सभी तो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बने।
1: पढ़ा लिखा,
2: रोशन,
3: महफूज,
4: मजबूत,
5: अमन पसंद,
6: मेहनती,
7: खुशहाल,
8: जिम्मेदार, मुकम्मल,
9: तेज रफ्तार,
10: सरसब्ज़ और शादाब।
0: चाहते हो कि ऐसा हो तो आओ मिलकर बनाए इस मुल्क को अजीम और नाकाबिले तस्खीर।
11: नशे के मर्ज में मुब्तला अफराद दूसरे मरीजों की तरह हमारी तवज्जो और नशे के इलाज के मुस्तहिक हैं। नशे के मर्ज में मुब्तला अफराद को तिब्बी मुआयने और इलाज के साथ मुनासिब देखभाल की भी जरूरत है।
12: अद्वियात और नफसियाती तरीका इलाज के जरिए नशे का इलाज मुमकिन है।
11: नशा एक मर्ज, इलाज मुमकिन।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस,

0: एक ख्वाब से जिसने जन्म लिया, ये सरजमीन, ये मिट्टी, ये मुल्क। आओ पूछें अपने आप से कि नाउमीदी, लाचारी, बेसुकूनी, क्या यही है हमारा मुकद्दर? क्यों ना हम ख्वाब देखें? क्या खुश रहने पर हमारा हक नहीं? क्या इस मिट्टी को खुशबू का हक नहीं? आओ एक नया जन्म दें इस मुल्क को। बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी लगन, कुछ नए ख्वाब और खूबसूरती की चाहत। हम सभी तो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बने।
1: पढ़ा लिखा, रोशन,
2: महफूज,
3: मजबूत,
4: अमन पसंद,
5: मेहनती,
6: खुशहाल,
7: जिम्मेदार, मुकम्मल,
8: तेज रफ्तार,
9: सरसब्ज और शादाब।
0: चाहते हो कि ऐसा हो तो आओ मिलकर बनाए इस मुल्क को अजीम और नाकाबिले तस्खीर।
10: जश्न आजादी मुबारक पाकिस्तान।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Lunch 2.6.
3: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करना। जाग जाग, जाग जाग, पाकिस्तान जाग जाग।
1: तू सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन का कयामत वतन।
2: इस 14 अगस्त पे मेरा तमाम यंगस्टर्स को, तमाम पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि इस मुल्क की कदर करें। जो कायद ने आजाद मुल्क हमें दिया है, इसकी कदर करते हुए इसके कायद के विजन को वहां तक लेके जा सके जहां पे कायद चाहते थे कि हम पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान की हमेशा हम इतनी उसकी इतनी रिस्पेक्ट दें। जब कहीं भी जाएं, बींग एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, हम ये शो अप करें कि हम जैसा कोई नहीं है। तो इस 14 अगस्त पे हम सबको मिलकर अहद करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर जाएं पाकिस्तान के लिए कि वो रहते वक्त तक हमारा और इस पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन रहे।

0: अब्बा, मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वज़ारत-ए-इंसानी हुकूक, हुकूमत-ए-पाकिस्तान।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

0: एक है, हम सबकी है ये जान।
1: पाकिस्तान हमारा है, हम सबकी है ये शान।
2: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: तमाम अहले वतन को FM 92.6 की जानिब से जश्न आजादी मुबारक।
1: किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो, ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: इस 14 अगस्त पे मेरा तमाम यंगस्टर्स को और तमाम पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि इस मुल्क की कदर करें। जो कायद ने आजाद मुल्क हमें दिया है, इसी कदर करते हुए इसके कायद के विजन को वहां तक लेके जा सकें जहां पे कायद चाहते थे कि हम पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान की हमेशा हम इतनी रिस्पेक्ट दें। जब कहीं भी जाएं, बींग एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, हम ये शो अप करें कि हम जैसा कोई नहीं है। तो इस 14 अगस्त पे हम सबको मिलकर अहद करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर जाएं पाकिस्तान के लिए कि वो रहते वक्त तक हमारा और इस पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन रहे।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
0: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

जिस दिन तूने जन्म लिया इस धरती में मां, हमने सुख का सांस लिया, दिल से निकली

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.
1: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।